0: जानकी
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: शुभ रात्रि।
1: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

जयदीप नारायण भगवान की जय। गुरु नानक जी महाराज की जय। दीप नारायण भगवान की जय।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री अलकापुरुष महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद चिस्त गुरुदेव की जय। विश्वगुरु महामंद्रेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

नष्ट हो गया। इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी, तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है, जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव, और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी। जब इनका पत्नी व्रत धर्म, जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया, तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा। जय बोलिए भगवान नारायण की जय। तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई। जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं, और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है। तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है। इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है। तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को। तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूँ। तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी, इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिवजी आ गए और भोले भाले शिवजी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है। आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया। वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है अभी, सत्य युग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है। गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र, सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं। कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा, तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर, समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था,
अब क्या है, शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो। जय बोले कृष्ण भगवान की, जय श्री।

destroy the temples, and he is torturing the Mahatma, Rishi Munis, and doing so many unjust things, violence. So there was, the time was a little bit difficult. And everyone went to Shivaji, and Shivaji told that, well, I cannot do anything now, just you need to go and ask to the Vishnu. Because I gave the blessing to him, and he is the devotee of Shiva. So there is the problems. So that's why what happened is, he need to go and worship. So Vishnu, everyone went to Vishnu. And Vishnu says that, well, I cannot help you. Only Mahadeva can kill the Jalandhar. Without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So, without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar, and Jalandhar went to fight. And they are starting fighting, and started fighting, and hundreds and thousands years that passed away. So, but Jalandhar was so brave, still he did not defeat it. So, ye Puran hai ki Shiv Puran mein jo aata hai ki Tulsi Mata Saligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड़ की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए, पाषाण विष्णु क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं। ये शिव पुराण का कहानी है, शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये उन तुलसी ने जो शरीर देह हत्या किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वहीं मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह। तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्यचित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसी कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था, संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था, वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया, और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ, शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। So and then Vishnu started to disguise again. That in Swastani Puran it says like, and Vishnu changed his appearance and he looks like exactly the Jalandhar, and he went, and when the time the Brinda saw the Vishnu became, what happened, you know, he faint, he lost there. She was so beautiful, and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate, and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. My husband is used to. And then before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage, and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived. I'm very tired with the Mahadev fight. Can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here.

I'll offer you, my lord. I'm waiting for you. You must be tired. I'll give some good massage. Come here. And she gave good fruits and everything. And she did the arati for her husband. And everything done. And that Vishnu did his notorious things. He performs that. And the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma. Finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev. And Vishnu is in Raslila with Brinda. In the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu sent message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's. That went to the Brinda's house. And that was his pati. And his shisho, his husband is dying there. And Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. Si Puran says that only the Vishnu need to remain as like the pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. O Vishnu, you are the strong hearted. You don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda curse, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else because you're disguised and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. तो फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि हे विष्णु छलकारी तू जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा साफ था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर एवरीवेयर वी यूज द कुश ग्रास. As we mentioned earlier session is, kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isiliye, is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur kya hai ki hum जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुशग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुशग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen.
The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because of the course of the Brinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people, tree. And you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है दैट पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड पीपल वुड्स तुलसी वुड्स कुश ग्रास तुलसी वुड सो व्हेन यू डेथ आल्सो इन सिमेट्री इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल कुश तुलसी इट्स इज लाइक It will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit Tulasi, little bit that Panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur Tulasi ke lakdi saath mein rakhlo aur chita mein koi bhi kisi ka bhi chita पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है तो वो तो स्पिरिचुअली है इफ यू डोंट बिलीव अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से उससे वायुमंडल को साफ रख देता है वो गंध को दूर कर देता है इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है हवन के लिए संविदा बना देता है जय बोलिए पीपल भगवान की जय सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और Basil tree, the Tulsi, ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature, high level. So that's why always Tulsi is beautiful, and then people is beautiful. So it says no matter whatever story is connected, but that is a wonderful gift from this universe, for the universe. So meditating under the banyan tree, and bringing the kush grass in your flower pot, and planting the Tulsi, kush grass is wonderful. That's why our saint and Rishi Munis, they ate that every prayer, you need to have leaf of the Tulasi, leaf of the people, and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalas also, that we put that, if you see that in the kalas, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, That is also Panchapallav. Mango and pipal and aak and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia and some other country, Canada. Nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it?
So better you can go and darshan here. You are India. While you are in India, you can

0: see and feel the that's a tree, the people tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye people ke rukh mein dhyan karne se, people ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se swas prashasan mein aashwasan to yahi hai. और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पिस से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है, इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pira. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We finished many chapters today, so which is important also. We will not have time some other time to read in detail. There is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
2: भगवान की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की
0: जय,
2: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय,
2: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर

whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, askeli, aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke Jalandhar ko kaisa Vishnu Bhagwan ne parast karne ke liye Brinda ko satitva haran karna pada. Aur satitva haran karne ke baad mein unka pati dharma nasht ho gaya. Pati dharma nasht hone ke wajah se kya hai ki Jalandhar danav mar gaya. Isliye pati bich patni bich ke jo dharma hota hai wo बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व तो के बारे में आज चर्चा किया है. शिव पुराण के अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिवपुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

0: ओम शलपुरजी महादेव की जय। महादेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapeetha Parampara.
1: Pozdrav Shri.

श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण यन् श्रीमन्नारायण नारायण।

0: नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इंद रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज azt írja
0: जो इच्छा कर ही मन माई

0: भगवान की
1: जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य।

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: की जय। विश्व गुरु महामंदवाईश्वर परमान श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सब कुछ देवे दाता दीप दयाल, सब कुछ देवे दाता दीप दयाल। यू कैन गो इन योर पिच, माय पिच वन गो।
2: सब कुछ देवे दाता

0: जय
1: ब्रह्मपुरी श महादेव
0: की जय
1: हर कृष्ण भगवान
0: की जय
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
0: की जय
1: महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुर जी महाराज
2: की जय।

ख्यम मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ दिव्ज्योति पराब्रह्मा दीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्यादीपं।

0: ओम शलपुरजि महादेव की जय। देवाद देवतेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरजी गुरुदेव की जय। आज का नंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्सनातन धर्म की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
1: महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय।

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरट है।

0: विद्दु एंड वेन इज थिंग एवरीथिंग इज हैव डन देन हाउ दैट
1: Sve je prikazano. Šiva koji pleše.
0: Da. Kada gri brak di, kada gri gri grag. Da, du, da, di, kabadaj, ta, re, ge, ge, ge, ge. Ek pair ke andar mein kitna jitna laga karke do hai nind ka aur ye जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

0: जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyon mata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare hain. जरा बस मैं कहूँ कि हर सोनी भाई बैठ रहे मैं तो हमें ठीक है हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है कितना है क्या है कैसा हुआ है तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे संग किसके साथ में रहना है जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी दैट इज कॉल्ड सत संग The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sitting like this, say, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे तो फिर वो इधर करे फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai. Janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai. तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So, child is going front and mother is behind it. Taki, the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So, sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo hi satya kahal ja gaya hai. तो सत्संग और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ सभी को किसी बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग सो वेरी नाइस सत्संग तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाथ लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और माँ प्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए वहाँ, नहीं तो वो बैठे तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हू आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka kisko kehte hain batao? Ha. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसी के ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country there, when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. स्वामी जी है महेश्वरानंद है, तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ, पहले मैंने कराया, बट इस एंड आई टॉल दे बट इट नो आई हैव डन एंड वाट डू यू वाट विल डू एंड सो माई डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब दे आर कम एंड मेड। सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है, वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो हो, ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट। एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर and here my was staying in my house and there was one very nice person in Rupavas me aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the but he was no very great standing very great wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao to bab ji ke wo nahi the itna छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चबड़ गया हो गया यूँ से भी जगह हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस, माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड। 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास। तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य ही है। अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस अब हम मनुष्य है। तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है, जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप लोग मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का, तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ Hein? Qui n'est? Premananji n'est? Ah, Premananji quand même. Et Premananji? Achat, Premananji, ça, mais ça, c'est que Prem. C'est que nom est Prem. Prem qui. Bolo. Ah, तो वो इनका है प्रेमानंद जी का प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मगा या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना रर रर रर इसके इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं कितने वृक्ष है अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में मैं गया था कहीं तो ये भी आए एक बार आए दो गए फिर वापस आए और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है प्रेम की बोलो श्रीदीप नारायण भगवान की जय
1: श्री मारवानंद जी सदगुरु

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवानंद जी की जय। गुरुदेवा की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: मात पिता गुरुदेवा
0: की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: ओम शांति शांति शांति। हरिओम।
0: जय की जय।

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound the second element, the second tattva beside the akasha, the fire element, was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है, उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है. स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए, मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है.
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full moon.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यही मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.

0: अखाड़ा बजाए तलवार बजाए।
1: यू कैन ट्राई मैनी थिंग्स अनलेस यू हैव नॉट कंट्रोल्ड चित्त वृत्तिस एंड दैट कैन ओनली बी थ्रू गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। देयरफॉर गुरुदेव